बड़े प्यार नाल सरवण करो। ये जो आप जी नूं मैं सरवण करवा रहा अज उस दिन असी गुरमुख प्यारे सरदार जगजीवन सिंह जी सानू नाल लैके गए और सब लोगों नूं वेख के जिहड़े धर्म दा इजहार कर रहे सन अपने अपने तरीके नाल। और मैं भी उन्हां च क्या भाई दुनिया विच काफी लोग हन जिहड़े बिल्कुल किसी गल नूं मनदे नहीं और जिहड़े तुसी मनण वाले हो उही साडा परिवार है भावें तुसी किहड़े धर्म तों बिलोंग करदे हो। उसे तरह ही तुसी गुरु के प्यार वाले सिख जिहड़े आ गुरु नूं अपनी हाजरी लवांदे हो और मेरे कीर्तनीय वीर मेरे सामने बैठे हुए हन गुरु कृपा करे इन्हां नूं चढ़दियां कला बख्शे। इस तरह ही गुरु घर दा संदेश दूर दूर तक पहुंचांदे रहण। सरवण करो ए पानमती ए मत ताल है नहीं ए पानमती ताल है और गुजरी कबीर साहब की गुजरी राग भी गुजरी है और आप गुजरी सुनो गुजरी विच ही श्रवण करो इसनों और इस जो इसका ताल है वह 11 मात्र है पानमती ताल।

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हुण इको रब का नाम है लिखिया होया अपने हिरदे ते। किती वड़ी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी दा नाम, रब दा नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

0: खोज शब्द मिले खाल ससो गुरु हित लावे। झूठे गुरु दे पिछे जाण दी कोई जरूरत नहीं। सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गद्दी देण लग्या इक गल कही सी, कहण लगे भाई साडा शरीर अज है कल नहीं होवेगा, पर मैं तुहानूं गुरु ऐसा दे चलिया जो इत्थे उत्थे तुहाडे हमेशा ही नाल रहेगा, हमेशा तुहाडी अंग संग सहायता करेगा। ओ गुरु कौन है? शब्द ही है और कोई नहीं। मत मन अंदर कोई ऐसा परम आ जाए, शब्द गुरु पवन गुरु, गुरु शब्द है वहां गुरु, गुरु शब्द सुनाया, शब्द कोई अज का गुरु नहीं, जा गुरु नानक ने नहीं आख दिता, ए शब्द गुरु जदों की सृष्टि बनी उदों का चलिया शब्द गुरु। ते साहब आखदे ने खालसा सो जो गुरु हित लावै,
1: खालसा सो गुरु हित लावै, खालसा सो मास

तेरा इन्हें की आख दी का इस नाम सिमर प्रभ अपना गुरसिख अमृत वेले उठ जा इशनान कर ते इशनान करके अपने प्रभु का सिमरन कर नाम दे विच लीन हो जा सिमरन दे विच जुड़ जा यही तेरी रहनी यही मर्यादा है यही गुरमत है इस नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिगण लाथे प्रभ सरणा प्रत्ये भय संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुपाख

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपड़ा बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई हैं। मुर्शे का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है, सुलझाना इसको आता नहीं। और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। पितर शब्द में बताया, शरीर रूपी कुआं है, कूटा एक शरीर रूपी कुआं है, जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। शरीर रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस शरीर रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओहो जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यों टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों वाली, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाए। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, तत्लाती है। आखो भाई, मात को क्या हो गया? बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। जे बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो वाहिगुरु, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं। एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिगरा था, माखियों का डिगरा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा, एक काला, उस रस्सी को काट दिया। आखो भाई, ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली। इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों, पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया। उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें आप, तो

पूछते हैं, आप भी पूछ कर देख लें। हम पूछते हैं, एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें, अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर, हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे यह पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे? किसे ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर मरेंगे? हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक, कितने जवान जौवन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, न बारिक न जौवन, न बिरदी कछ बंद, ओ वेला न बूझी है, जो आए पर जम फंद। कितने आए, कितने चले गए, ये भी बताया गया। जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना, जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्मे सो जानो मुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हम ने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए। जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो, रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है। खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा। ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है? लेकिन राखी करने वाला मजबूर है, वो तो ये बोलता है ये मालिक है, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे समझा सकते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे करो।

ऐसे ही जब हम संसार में आए, हमारे आने से पहले हम हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी आदि ऐसे बुजुर्ग आए हुए थे, हमारे आने से हमारे घर में बहनें आईं, आखू आए, मेरे भाई आए, मेरे आने से मेरे घर में बेटी आई, बेटे आए। देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसी की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर स्यों ना ही चारा ताको की जाए सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले कोई ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी कोई ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तन खीना पे केश तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी। जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा, आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए ही लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई, ऐसी उलझन में बंधा हुआ आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो भाई, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा। भूलो रे ठग मूरी खाए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने
परम पिता परमात्मा को गवाया नहीं भुलाया है। आखो वाहेगुरु। मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं भुलाया है। देखना, जी हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो वाहेगुरु। उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको गवाकर को तो जी भी नहीं सकते। यह सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं भुलाया है। आखो वाहिगुरु। जब हम ये बोलते हैं भुलाया है, तो पितृ वाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं भुलाया गया है। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, भगत जी ने कमाल कर दी। बिस्माती विचार प्रगट कर दिए। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, देखना, ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मान मुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हो भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ताय साहब कहते हैं, बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से पुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो वाहेगुरु। ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला, भूलो रे ठग मूरी खाए। आखो वाहेगुरु। इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो वाहेगुरु। जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी, ठग ओरी, भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ, ज्ञान का पदार्थ, जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना, मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर। जे अगर मन वाला मनुख होकर, मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है। जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है, तो मन निर्मल हो जाएगा।
हमारा मन मैला क्यों है कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं? आंखों वाहेगुरु, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं? आंखों वाहेगुरु, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोहो, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोहो, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो, आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ये मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ। ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पाप माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इसनू अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो वाहिगुरु, अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना जिमें मद मक्खी शहद की मक्खी
आखो वाहिगुरु। शायद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ जमदूत उसको लेने आ गए, वो बोला ऐसे करो भाई मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा ये धन आगे नहीं जा सकता, कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अत जरे, साध संगत कब हूं नहीं करे, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपय हुए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा
जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु मिल जाए, जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखते ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजयाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे

सागर ज्ञान दा, सागर आत्मक सुखां दा, सागर अकाल पुरख दी सच्चाई ते वडियाई दा, सागर सच्ची ते

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांडे सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ दिओ किसे ने चुक लिया। हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे? सिद्धां ने लुको ए लोटा, सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी। असी लुकोवांगे, भंड साडे कोल आणगे, असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धां ने भंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ ओदे कोल, उस नूं आखो जे ओदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लब देवे। ये सारे भांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लब देओ, किसे ने चुक लिया? तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जानना। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धा दा लुकोया लोटा कोई लब नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धा नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है दियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ते पंगरनाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

ना जातियों तेरी मां ने तेरे गुरु ने तेरे मन का भांडा चंगी तरह धोता नहीं भाव तेनू चंगी सिख्या नहीं दिती केड़ी

आदमी औरत तो संसार की खेड चलती तिया पुत्र पैदा होंगे तो जे सारे आदमी घर वालिया मावा बना लगे तो धन गुरु नानक साहब कहते ने उन्होंने जोगिया जेड़ा संसार तो डर गया जेड़ा परिवार तो ही डर गया जेड़ा मोह माया तो डर के जंगलों में जाके बह गया परमेश्वर की खेड़ तो जेड़ा डर गया वो परमात्मा की की प्राप्ति करेगा। आखो सतनाम श्री वाह किसी कवि दे बोल हैं बड़े सुंदर हैं। वो कहता है संसार से भागे फिरते हो भगवान को क्या तुम पाओगे। आखो सतनाम श्री वाह साहब जी कहते ने संसार विच रहो तिया पुत्रा विच रहो काम कार करो अपनी कमाई विचों गरीब गुरबे की सेवा भी करो दान पुन भी करो मर्द बनो। मर्द ते हो है ना जिड़ा सारिया मुश्किलों विचों पार हो जावे जिड़ा डर के किनारे बैठा रवे वो कोई मर्द नहीं होंदा। संसार विच रहो और फिर परमात्मा की प्राप्ति करो। साहब जी कहते ने सोई मर्द मर्द मर्दाना मोह माया तो उत्ते उठो मोह माया विच रह के अंजन माहे नरंजन रही जोग जोगत एव पाईए। साहब जी कहते हैं धन गुरु नानक साहब कालख का कमरा भरिया हो हुण कमरा साफ होवे उद विच बंदा जावे ते बाहर आके आखे जी मेरे कपड़े साफ ने साफ ही रहने ने क्योंकि कमरा ते साफ सी। गल बड़ी समझण वाली साफ कमरे विचों वापस आ जाना कपड़े ते साफ ही कमरा जो साफ है स्वाद ते ए है ना कमरा कालख दे नाल भरिया होवे बंदा उस कमरे विच जावे ते बिना कालख लग्या बाहर आवे असल विच करामात ए है ना। साहब जी कहंदे ने संसार विच रहो परिवार विच रहो काम कार करो दुनिया दे मोह माया विच रहंदिया होया मोह माया तो उत्ते उठ जाओ असल विच ए है साबत मर्द ए है सूरमा ते जेड़ा संसार तो डरिया फिरदा परमात्मा दी खेड तू डरिया फिरदा वो परमात्मा दी की प्राप्ति करेगा। गल्लां सच्चियां पर कौड़ियां लगियां।

असल विच कुछ जोगी होए महापुरुष जेड़े अपना जप तप गुआ बैठे औरत ते मोहित होके। हुण जे कोई अपना जप तप गुआ बैठा तो उहदी अपनी कमजोरी। इन्हां लोकां ने यह नियम बना दिता कि औरत जिहड़ी है भगती दे राह विच रुकावट है। इसे वास्ते कहो जिहा दौर चलिया कि औरत नूं यह कह दिता गया जिथे रब फेल हो गया उन्हें औरत बना दिती। औरत भगती दे विच विघन है। इथों तक लिखिया गया कि रब जिते फेल होया उथे औरत बनाई। किसी ने कहा औरत रब दी एक मजेदार गलती है।

को धनवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है कि बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है, भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

फिर तुसीं दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकदे ने। ओ सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहिंदे ने, मैं विश्वास नाल कहिंदा वां कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन योग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

دبائی جاؤ، پانی اندر پرویش نہیں کرنا، کیونکہ اندرلی ہوا پانی نو اندر لنگن نہیں دیتی، پر تھوڑے جہ ٹیڈا کر دئیے پانی نو اندر لنگ جان دی آگیا دے دئیے، راہ دے دئیے، پھر پانی اندر لنگ جاندا ہوا نو باہر کر دے، ہوا اپنے آپ باہر ہو جائے، جیون وچ کوئی امرت بھر جاوے تے ویو رہ ہی نہیں سکے۔ وہ امرت بھگت نام دیو جی کہندے نے میں اپنے سارے شریر چ سارے جیون چ بھر لیا، یہ انہوں نے ستر تے دوئے دی گل کی۔ کئی باری تو حیران ہوئی جائے کہ پرانا وگیان کڈا مکمل سی، اج دا وگیان اپنی طرح مان کر رہے، اس شریر دے 72 کروڑ ناڑی تنتو لکھے گئے پرانے پرانا وچ، نکے تو نکے شریان تو لے کے وڈی تو وڈی ناڑی تک، جنہاں وچ مکھ ناڑیاں وڈیاں جڑیاں نے وہ پھر 72 گنیاں۔ भगत जी कहते मेरे शरीर की हर नाड़ी अमृत नाल भर गई, शरीर का रोम रोम अमृत नाल भर गई, 70 दोए भरे अमृत सर, लेकिन होया तद है जब 10 बैरागन मोहे बस कीने, 5 ज्ञान इंद्रे 5 कर्म इंद्रे जेड़े रसा विच पए हुए, अगे मैं इन्हां दे वस चलदा सी, अगे मैं इन्हों के अधीन सा, कदे मैं जबान के अधीन रहा, कदे मैं कन्ना दे, कदे अखा के अधीन रहा, कदे मैं काम के अधीन रहा, इन्हों इंद्रिया के अधीन सा मैं, इन्हों का गुलाम सा मैं, लेकिन गुरु की युगत लैके अपने आप को समझा के मैं इन्हों दसा के दसा ज्ञान इंद्रिया काबू कर लिया, 10 बैरागण मोह बस की बस कर लिया इन्हों दसा इंद्रिया, ते एना नू बस करन तो बाद जेड़े एना दे स्वादा विचों पैदा हुए सन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हुण उन्हां दा नां कोई नहीं रह गया, पंचों का मिट नाम, हुण दा नां मिट गया, उन्हां दी हस्ती खत्म हुंदी चली, एह काबू आ गए ते वो मिट गए, जद वो मिट गए ते फिर हुण बाकी कुछ तां भरना सी ना इस जीवन विच, विषय विकारां दा कारण द्यो दा कारण निकल गया जीवन विचों, कुछ तां भरना सी ना, ते भरे जाण वास्ते जो परमल चीज सी ओह सी नाम दा अमृत, उस रस नाल मेरिया सारिया नाड़िया मेरा सारा जीवन मेरा सारा शरीर भर गया, ये सच करके जानना भगती का रस निरा मन नहीं मानता तन नहीं मानता, तुसी जितनेमी हो कई बारी तुसा बैठे हैं बाणी पढ़ते हैं सिमरन करते हैं अमृत वेले जाके थोड़ा चिर भी चौंकड़ा मार के ध्यान करन बैठे हैं, महसूस किया वेगा झरनाहट आउंदी शरीर विच, झरनाहट आउंदी वो आरंभ हुंदा है, रस का आरंभ हों, गुरमुख इस रस नमका लेंदा है, मनमुख झाके छड़ देंदा, इस रस का झलका जलवा तो मिल जाता उदों ही मिल जाता है, जब कोई बंदा थोड़ा जिहा महापापी लोगों वेखिया गुरु की सरदल से मत्था टेकदिया कई बार वह भी चुन चुनी लेंदे, वह भी एक थराग महसूस करते हैं, चुन चुनाहट भी जीवन च महसूस करते हैं, रस तो आ जाता है लेकिन दूजे रसा च फसे होने करके वह इस रस नूं माण के भी छड़ जाते हैं, गुरमुख वेखदा है रस नूं कहिंदा फिर यह छड़न वाली चीज तो है, सारे शरीर के अंदर एक निक्की जी मिठी जी कंबड़ी छेड़ के मालको रस दर्शाते ने अपने भगत नूं, भगत जी कहिंदे ने वो रस मैं वेखिया तो फिर लै ही लिया, माण ही लिया, फिर उस नूं अपने जीवन च रचा ही लिया, 70 दोए भरे अमृत सर दिख को मार कढ़ाव, हुण मैं इस तों पिछा आउण नूं तैयार नहीं, वैसे तो ज्ञानी दूजा अर्थ भी करते हैं कहते हैं हूं मैंने दोबारा जमण की लड़ नहीं पाछे और पौर न आवन पाव, हूं मैं मुड़ के पिछा आने की लड़ नहीं पेगी, लेकिन एक सूझवान विचारवान यह भी अर्थ देंगे वो कहते हैं हूं इस तों पिछा मैं मुड़न तैयार नहीं पाछे बौर न आवन पाव, जो अवस्था मैं मिल चुकी है मैं इस तों पिछा हटन तैयार नहीं, हूं एक बंदे अमृत का रस ही ना आया होस की गल नहीं, अमृत छक लिया हो अमृत का रस ना आया वो गल हो रहा है, लेकिन जिस बंदे बाणी पढ़न का नाम जपण का अमृत छक के रहत बहत रखण का रस आ गया है, वो रहता नूं किवें छड़ेगा, वो बाणी नूं किवें छड़ेगा, वो नाम नूं किवें छड़ेगा, बड़ा मूर्ख होवेगा जे छड़ेगा, या तो उन्हें रस माणिया ही नहीं तो एडा कीमती रस आ जाण तों बाद उहनूं छड़ देवे कौन ऐसा कमलापण करेगा, भगत जी कहिंदे ने मैं इस अवस्था तों पिछा हटण नूं तैयार नहीं थले आउण नूं तैयार नहीं, जो रस आया है जो एक कदम भी पिछे हटने तैयार नहीं मैं।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहते यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साढ़े मुतलक कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

सच्चे साहब दी हजूरी विच जदों जाइए तां पेटा की रखिए। अलख नरंजन एको वरतै एकै जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। लाकीरी तो बर्मा तक अकाल पुरख वाहेगुरु दे दर तो ही सारे मंग रहे हैं, ते उस अकाल पुरख वाहेगुरु अगे की रखी। ए तन दौलत पदार्थ तां उहदी देन है और जुगा जुगंतर सानू देंदा आ रहा है, पर असी की रख सकते हैं उहदे अगे। तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, भाई अमृत वेले उठ के इशनान करे ते एकाग्र चित हो के मोह के बोलन बोली है जित सुन दरे प्यार। इस मुख दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तत कर, ए उस्तत उसकी बेटा करेगा ये कबूल कर दे। किसी तन दौलत दे वटे प्रसन्नता नहीं मिलनी, धन गुरु नानक पातशाह

0: टेक है क्या गुण तेरे साथ माली शुरुआत है मैं मूर्ख की केत की बात है कोट अपराधी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पे किया
1: से फिर गर्वास ना पड़े।

भाई बहुत मद जो बास बस्त मुकुरमा है जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर कटगी खोजो पाए बार पीते एक जानो एक गुरज्ञान बताई नानक बिन आपा जी ने मिटे ना।

मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इन्ना जानना कि तैनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तैनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालक तैनू प्रवान करन वास्ते, तैनू प्रवान होण वास्ते, तैनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा, ना मेरे कोल रूप है, ना मेरे कोल अखां ने, ना अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तैनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तैनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तैनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तैनू प्राप्त किवें होवां, तैनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा, तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा।